कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, हर्रम तर्रम दुनिया के कैसे कैसे हम, कहीं ज्यादा कहीं कम।

आज मेरा दूल्हा नहीं कम किसी राजे से, आज मेरा दूल्हा नहीं कम किसी राजे से, आई बारात बाजे गाजे से।

लग जाए बात, मंदिर का पाप है मिलने की रात है, तू क्यों दास है लाए बजाने वाले कहा, लाए बजाने वाले।

प्यारी अगन मीठी मीठी चुभन प्यारी प्यारी तड़पती हूँ मैं आरज़ू मैं छुपाए तड़पती हूँ मैं आरज़ू मैं छुपाए मुखा पत्ती।

जेब जिस दिन भी खाली हुई जान रह जाएगी सब धरी। इतराना ना अपनी खोटी अठन्नी पे इतराना ना रुक जाना जरा मुस्काना हमें तड़पा के।

ये जंगल में मंगल गूंजे नगाड़ा। राजा बनवासियों ने इंद्र का अखाड़ा राजा।

0: राम के मन में सीता का ध्यान,
1: प्राणों की आरती, प्राणों की आरती जलाई है जलाई है।
2: आज राम जन्म की बधाई है, बधाई है। आज राम जन्म की।

तुम आज किसी कहो जाने मुझे बालमा अब न सताओ रे आरे आरे आरे मुझे बालमा अब न सताओ रे।